आश्रम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते, उनके चरणों की छो प्राप्त होती, कितने बड़े भाग होते हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कब आता। गुरु अर्जन देव जी इस वेद को खोलते, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

तो जागता है, गुरु सूरज के माफिक है। ये बात अलग है, हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दरवाजे खोल।

अदेव जच्छ गंधर्व तुर्क हिंदू न्यारे न्यारे देशन के देश को प्रभाव है न्यारे न्यारे।

महाराज जी वाणी चाहते हैं, चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे, चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे, जे को जन्म मरण ते डरे सात जना की सरनी परे, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक तांके बल बल जासा। बाबा जी बाणी च आखते हैं नाव रूप भयो साध संघ,

राग प्रभाती दे इस रंजक स्वरूप विच भगत कबीर जी उस खालक दी नूरानी होंद संबंधी समुच्ची लोकाई नू उपदेश दे रहे ने। लोगा परम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहे हो सब ठाई।

नौवें पातशाह साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी राग जैजावंती दे अंतर्गत विषय विकारा विच ग्रसे नाम विहूणे मन की दशा का बयान कर रहे हैं। रे मन कौन गत होए है तेरी, एह जग मह राम नाम सो तो नहीं सुनह कान, बिखियन स्यो अति लुभान मत नाहिन फेरी।

इस धरती ते ऐसे मंत्र हन जो सप दी बिच्छू दी होर कई प्रकार दे जहरीले कीड़ियां दी जहर उतार लेंदे हन मंत्र, पर जिन्हां नूं उस परमेश्वर दी प्राप्ति दी इच्छा है, जिन्हां नूं बिरहों दा सप लड़ गया है, उन्हां नूं बिना दर्शना तों होर कोई इलाज नहीं है। बिरहों पुजंगम मन वसै

दामाद गंगा ने अपने हाथ तो एक सुंदर कड़ा उतार के पंडित नू दे दिता, भई ये मेरे वालों प्रसाद दे दी भगत जी नू, नाले मेरे वालों नमस्कार भी करी, क्योंकि सारी प्रकृति महापुरखां दे चरणां ते नमस्कार करदी है। गंगा जमुना सुरस्ती गोदावरी ते करे तूर उद्दम साधु की ताई, गंगा जमुना सुरस्ती गोदावरी ते करे उद्दम तूर साधु की ताई, किल बिख मैल परे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की तूर गवाई। जेड़े महापुरख होंदे ना भगत जन, ये तुरदे फिरदे तीर

थारा किवन कि नहीं निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा कि नहीं ग्रह तजवन खंड पाया कि नहीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती।

आए जदो आनंदपुर साहब दरबार विच नहीं गए, उथे आए जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा सोहना बाग सी, ते बाग दी सेवा कर रहा है भाई केसरा सिंह, आके चरणा विच बेनती की, भाई साहब कृपा करो सानू ऐसा मार्ग दसो कि साडे कोल एक सिख दी हत्या हो गई है, जो पानी मंगदा मंगदा चलिया गया, असी उहदे मुंह विच घुट पानी दा ना पाया, ते हुण असी ए अपने सिर ते पिया होया गुनाह साडा कीता होया पाप किवें बख्शिया जावे, ते सानू धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन होण। भाई केसरा सिंह ने आख्या तुसी इसे बाग दी सेवा करो, समा आएगा तुहानू धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन भी होण। भाई केसरा सिंह रोज अमृत वेले आ फुलां दी सोहना एक सेरा बना के लै जांदा सी, ओ सेरा माता जीतो जी जदों धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दरबार विच आउंदे सन तां उन्हां दे गल विच पाया करदे सन, ओ सेरा अज सोइना बोइना ने अपने आंसुआं दे नाल परोया तैयार कीता, आख्या भाई केसरा सिंह लै जा साडी बेनती, ते पातशाह नूं कहीं साडे वास्ते की हुक्म है। जदों भाई केसरा सिंह सेरा लै के आया, ऐसे प्यार नाल गुद्दिया होया सेरा, जिसदे एक एक फुल ते सोइना मोइना ने पता नहीं कितने कितने अथरू डेगे हैं। जदों माता जीतो जी नूं लिया दिता, जो धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह दे सुपत्नी सन, लो माता जी, माता जी कहण लगे भाई केसरा सिंह अज बड़े प्यार नाल सेरा गुद्दियाई, एडा सोहना सेरा, आख्या ये मैं नहीं गुद्दिया, ये कोई दो सोइना ते मोइना दनपति आए हन, ये उन्हां गुद्दिया, ताही ये धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आ गए। माता जीतो जी ने सेरा साहब जी दे गल विच जदों पाया, अंतरजामी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहण लगे भाई केसरा सिंह आ बेशक उन्हां नूं जाके कह दे सोइना मोइना नूं बाग दी सेवा जरूर करन, लेकिन जदों असी बाग विच आईए तां साडे मत्थे ना लगन। साध संगत बोलो श्री ओके, साडे सिख ने वचन कीता है कि तुहानूं ठाकुर दर्शन नहीं देणगे। वापस आया भाई केसरा सिंह, मन बड़ा उदास है, सोइना मोइना समझ गए कि अजे हुक्म नहीं मिलिया, रोज नाम जपदे हन सेवा करदे हन। एक दिन रात दा समय, दोनों अपनी झुग्गी विच बैठे शब्द गा रहे हन, मन बैराग भया दर्शन देखने का चाव, ताई बुआ खड़किया, बुआ खोलिया की वेख्या माता जीतो जी खड़ोते, आख्या मेरे बच्चियो फिक्र ना करो, जिस प्यार नाल तुसी गुरु घर दी सेवा कर रहे हो नाम जप रहे हो एक दिन ओ जरूर आवेगा, मेरा मन कहिंदा है जदों तुहानू कलगीधर पातशाह दे दर्शन होणगे। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। पौ सतवीं दा दिन नेड़े नेड़े आ रहा, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा अवतार पुरब, सोइना मोइना ने सोहने फुल तैयार कीते के जाके साहब जी दे चरणा विच भेटा करके गुलदस्ता बना के सोना भेजांगे। एक दिन विच रह गई, अगले दिन पो सतवीं दा दिन सी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे आगमन दा, प्रकाश उत्सव दा, ताई रात एक रोड़ा जलाली करके फकीर आया, उसने सारी क्यारियां विचों फुल तोड़ के ले जाण लगा, सोइना मोइना ने जदों ए वेख्या ते चरण पकड़ ले, आख्या ए फुल तेरे वास्ते ने, ए फुल असी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह वास्ते सजा के रखे, तां ओ कहण लगा जे मैनू फुल ना दियोगे तां मैं तुहानू श्राप दे के जावांगा। कंब गए, गश खा के दोनों डिग पए, सर्दियां दी रुत है, दोनों दी लोथां बाग विच पईयां। जदों सवेरे रोड़ा जलाली फकीर फुलां लै के गुलदस्ता बना के धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे चरणा विच पहुंचिया, अज पौ सतवीं दा दिन, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा जन्म दिन,
ਸਾਰੇ ਪੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਰੋੜਾ ਜਲਾਲੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੜਬਕ ਕੇ ਉੱਠ ਪਏ। ਆਖਿਆ, ਉਹ ਰੋੜਾ ਜਲਾਲੀ, ਤੂੰ ਰੋੜਾ ਜਲਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੋੜਾ ਪਲਾਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਆਏ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਇਨਾ ਤੇ ਮੋਇਨਾ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਕੇ ਪਏ, ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਸੋਇਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਤੇ ਮੋਇਨਾ ਦਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਲ ਲਿਆਓ। ਜਲ ਦੇ ਛੱਟੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਆਖਿਆ, ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੋਹ ਸਤਵੀਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਤੁਹਾਡੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਿਆ। ਅੱਜ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲੋਚਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਆ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਔਰ ਰਸਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਆਖੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲਿਆ, ਸਾਈ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ, ਫਰਕ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਨਾ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾ। ਆਓ ਕਰੀਏ ਬੇਨਤੀ, ਮਨ ਹਿਰਦਾ ਔਰ ਰਸਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੁਕਾਰੇ ਕੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ

मुख है अंगा। खालसे के हों सद सद संगा, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो कैयत बिरद, खालसा मेरो पछ अरपाता, खालसा मेरो सुख एलादा।

मान मैं तू मेरो खालसा से ही, खालसा मेरो स्वार्थ से ही। आ खालसा मेरो स्वार्थ से ही।

जेवा एक पार ना लेही। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध। शेष रसन सारस सी बुद्ध

ना अपनी शक्ति भी कौन रहे ये तो दुश्मन है उन्हें ना क्रोध नहीं करते है उन्होंने ही पला सोचते है उन्होंने ही पला सोचते है शबद तो शुक्र ये गुरु नानक साहब महाराज की पंक्ति है हुक्म जाए चलना नानक लिखिया नार जो तद तो भावे साई को लिखा तू सदा सलामत निरंकार जो कुछ करना कसो कर नवे महाराज भी माता नानक ने चिट्ठी लिख दे अंत वेले चिंता तंग कीजिए जो अनुमानी हो मार्ग संसार को नानक चल निकले चिंता नहीं करनी चाहिए अकाल पुरख जो को कर रहा चंगा कर रहा है उसके विच दखल नहीं देना चाहिए जो कुछ करना सौखा है रहा चिंता नहीं करनी चाहिए चिंता तंग कीजिए जो अनुमानी हो मार्ग संसार को नानक चल निकले चिंता करूंगे तो परमेश्वर भूल जाएगा दुखा सुखा भी एक या ना रहोंगे तो परमात्मा भूल जाएगा मतलब तो परमात्मा ने चेते करने के फार्मूले महाराज दसते हैं फिर महाराज जिदा चेता रहे वो असि कम करना है असि वो कम करना जिस करके सानू परमेश्वर से दूर न चली जाइए बाबा जी परमेश्वर के नजदीक जाइए वाले मरदाने मांगो एक दो मंत्र एक दो बाट हमको साथ गन को खाट ये मतलब यह है वो काम करना जेरे करके साडा प्रेम परमात्मा के पास बधे वो काम नहीं करना जिस करके अस दूर चले जाइए कर्मी आप अपने के नेरे के दूर जिनी नाम ते आया गैम सकत काल नानक ते मुल कहती छुट्टी नाल इस कारण से श्री गुरु नानक देव गोरख ते सिद्धा नु कहने जिदा वो सेठ नु फिर संता महात्मा ने पूछा तू हर शोक नहीं किया कहना आपकी कृपा महाराज गुरु नानक साहब की पंक्ति जारी हुक्म जाए चलना नानक लिखिया नाल हरक्षोभ नहीं मैनु आया है जिस वेले नौलखार चला गया मैनु गमी नहीं आई है मिल गया खुशी नहीं हो जाए यह नेशा होवे तो पुरुष मुक्त होंगा ए नेशा होवे सम दृष्टि होवे इको ये दृष्टि होवे तैसा सबदन तैसी समाटी तैसा अमर तैसी भी खाटी तैसा मान तैसा मान तैसा रंग तैसा रजान जुगल ताए साई युग नानक प्रोपुर कही जीव मुत श्री रामचंद्र लक्ष्मण सीता को बंगास हो गया हुक्म हो गया बंगास ये तिने बखरे एक कोठे इकट्ठे हुए सलाह कर दे निकलने दे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहने लगे तुम थानू तो बनवास नहीं हुआ मैनू होया ना सीता नू होया मैनू बनवास होया तुम भी नाल चले चले तुम साडे आखे नहीं लगे है पर एक गल करनी है इतों नाल कोई चीज नहीं ले जानी है मालिक परत है बस्तर भी ला देने जेह नानकी दे पेकिया के बस्तर वो लैने एक एक धोती लैनी है सर्दी जटा भूती ला लैनी है जुत्ती नहीं पानी सारे का मालिक परत है नंगी पैरें जाना है नाल कोई चीज नहीं रखनी लाल न मोती न हीरे न चंगा वस्त्र सर्दी जटा साधु भेद में जाना है मन गया लक्ष्मण जी ते सीता श्री रामचंद्र भी एक एक धोती ला ले सारी चीजें पास कोई चीज जो निकले उन्होंने चेहरे च उन्होंने चेहरे बच परमात्मा का नाम सम है हरक नहीं शोक नहीं दुख नहीं सुख नहीं महाराज कहते हुक्म चलना नाम निकली जाना ये ताही तो संसार मगरों लथेगा कि सचारा हो ताही परमात्मा के दरगाह में सच्चे होवोंगे क्यों गुरु टुटे पाले संसार मगरों के में लथेगा हुक्म जाए चलना नाम निकली गया नाल जो महाराज का हुक्म मना गए हरक नहीं शोक नहीं फिर तुरे जाने मोहे श्री रामचंद्र जी है पिछे सीता जी पिछे लक्ष्मण जी सीता जी तो रामचंद्र दे पैरों से अपना पैर नहीं रखते लक्ष्मण ना सीता दे पैरों से पैर रखता ना रामचंद्र दे पैरों से पैर श्री रामचंद्र जी कंडा चुप गया खलोदा सीता जी कंडा कटन लगे लक्ष्मण जी तो क्रोध आ गया कहना महाराज नाले तुम मेरे गुरु नाले इष्ट दे थानू बनवास भी दिता नजायज भरत नाज दिता नजायज मैं दशरथ मारांगा दशरथ मारांगा मैं कई भी मारांगा उन्होंने विरोधियों को मारांगा मैं शेष नाग का मैं थानू नंगी पैरें जंगल के बीच में मारा नहीं वेख सकता नजायज ही बनवास है नजायज ही भरत नाज है रोवे श्री रामचंद्र कह लगे लक्ष्मण बाट तेरी ठीक है ये मनुखा तो किस वास्ते मिली जाए मानस जानो सानू राज करने वास्ते मिलिया किस वास्ते सानू मनुखा बूटा तीन की पालना करने वास्ते मिलिया पक्के पाने वास्ते धन जमा करने वास्ते क्रोध लोभ करने वास्ते सानू मनुखा दे मिली किस वास्ते मिली है पंजवें महाराज कहते भई प्राप्त मनुख दे वधिया गोल मिलन के तेरी वधिया जिस वक्त को लहे तू आया राम नाम संतों का पाया जंगलों में जावे।